ई पावन पवित्र शब्द साहिब श्री गुरु नानक पातशाह दा उच्चारण कीता। जिस शब्द अंदर सतगुरु गुरु नानक पातशाह सानो कलयुग जीवां नूं उपदेश देंदे होए एक गल समझांदे, असी चंगे क्यों नहीं। कदी किसे मनुख ने अपने आप नूं भी माड़ा आखिया, ओ ते कहिंदा मेरे वर्गा चंगा है ही कोई नहीं, जिन्ना मैं सियाणा, जिन्ना मैं सुगड़, जिन्ना मैं गुणवान, जिन्ना मैं ज्ञानी, मेरे वर्गा कोई संसार विच नहीं है। पर साहिब कहिंदे ने भाई चंगा किसे चंगियाई नाल हुंदा है, शुभ गुणा दे नाल हुंदा है। अपने आप चंगे बन बहना उसनु चंगा नहीं आखदे। इधर पट बाणी विच कहिंदे ने चंगे किवें हो सकने आ जे साडे अंदर मालक दी समझ मुताबक गुण होण। ते जे हे परमात्मा तेरे शुभ गुण साडे अंदर एक भी नहीं ते असी अपने आप नूं चंगे किवें खवा सकने। पट तां ऐसा कहिंदे ने हम अवगुण भरे एक गुण नाही। हे मेरे पातशाह मैं ते अवगुणा दा भरिया होया, मेरे अंदर एक भी गुण नहीं है, क्योंकि चंगा ते मैं गुण नाल होना है ना। पर जे मेरे अंदर एक भी गुण ना होवे ते मैं चंगा किवें हो सकदा हां।

कंचन नारी में जियो लोबत है, वो मीठा माया। हे मेरे मालिक, साडे अंदर वो गुण क्यों नहीं हन, अवगुण क्यों भरे हुए ने? क्योंकि जेड़ा साडा मन है ना, कंचन कहिंदे ने सोना ते नारी कहिंदे ने इस्त्री, बस इन्हां विषय विकारां विच पै के मोह दे जंजाल विच फस के माया दे मिठे रस चख के, हे परमात्मा सी तेनू पलाया होया।

चंगे गुणवंता हर हर दयाल। हे मेरे मालिक गुणवंता, तू साडे ते दया कर, कर कृपा बख्श। तुसी करो कृपा साडे अवगुण बख्श के ते सानू अपने चरणा नाल ला लो। कर कृपा बख्श अवगुण सब में, मेरे अवगुण बख्श दे, मैं अवगुण हारा तेरे दर ते आ डिगा हां। अगे

असी चंगे क्यों नहीं। जे मनुख चंगियाई वाल तुरे ना वह अपने गुण ही गिनी जांदा, कहिंदा वेखो मेरे अंदर किन्ने गुण ने। कदी असी परमात्मा दे गुणा वाल भी ध्यान दिता है? जे एक व्यक्ति दे गुण नहीं गिने जा सकते कि असी परमात्मा दे गुण गिन सकते हैं? नहीं। इथे यह कहना पाएगा, हे परमात्मा तू बेअंत है, मेरे अंदर अवगुण बतेरे ने, मैं ते अवगुण बख्शान आया, किछ रूप नहीं, किछ जात नहीं, किछ ढंग ना मेरा, किछ रूप नहीं, मेरा ते रूप भी चंगा नहीं। हुण तुसी हैरान होवोगे कि रूप केड़ा। सानू अपनी सुंदरता ते मान है, खूबसूरती ते मान है कि असी बड़े खूबसूरत हां। साहब कहिंदे ने ना भाई, इत्थे रूप है सेवा दा, किछ रूप नहीं, किछ जात नहीं। कईयां नूं माण हुंदा कि मेरी जात बड़ी उच्ची है, मैं बड़ी उच्ची कुल विचों हां। साहब कहिंदे ने नहीं, इत्थे रूप है सेवा दा ते जात है नाम जपण वालियां दी। उच्ची कुल विच कौन ने? जिन्हां कुल सिमरन है। किछ रूप नहीं, किछ जात नहीं, किछ ढंग ना मेरा। हे परमात्मा मेरे कुल कोई ऐसा ढंग भी नहीं। फिर कहिंदे ने, क्या मुंह लै बोले गुण विहून, नाम जपिया ना ते। क्या मुंह लै बोले? हे परमात्मा मैं किड़ा मुंह लैके तेरे सामने आवां, किवें तेरा सामना करा? कहिंदे ने जिवें एक मित्र अपने मित्र नूं कहिंदा है, मित्रा ऐ मेरा एक काम है ते तू कर सकदा, ते तू ये काम मेरा जरूर करना है। कहन लगा, चंगा भाई जरूर करांगा। कुछ समा बीते है कि दोनों मित्रां दा सामना हो गया। हुण जिस मित्र ने अपने मित्र नूं काम किया सी उहनूं भी याद आ गया, ते जिसने हामी भरी सी उहनूं भी याद आ गया। हुण जिसने काम आख्या सी ओह कहन लगा, लै मेरा मित्र मिलिया, काम होया होना, मैं अज इहनूं पुछना, ते जिन्हें करना सी उहने कीता, कोई नहीं हुण ओह अख बचांदा है। कहिंदा किते होवे ना होवे ए अख परा करे ते मैं कोलों दी लंघ जा, एदा मेरा सामना ना होवे। जे सामना हो गया इन्हें मैनू पुछना, मित्रा सुना काम कीता ही, मैं जवाब की देवांगा, की आखांगा? साहब कहिंदे ने भाई इसे तरह उस परमात्मा अकाल पुरख ने तेरे जिम्मे एक ड्यूटी लाई सी। जदों तू परमात्मा तो आया है ना, तू संसार विच जन्म लिया है ना, माता दे गर्भ विच सैं, ओदो तू परमात्मा नाल एक वादा कीता सी, हे परमात्मा एक बार संसार विच भेज, मैं तेरा सिमरन जरूर करांगा। ओदो एक वादा कीता होया। कहिंदे ने हुण ओ ते तू भुल गए है, ते परमात्मा दा सामना किवें करें? जदों परमात्मा दे सामने होया उन्ने पहले पुछना, सुना मित्रा जिहड़ा वादा कर गया सैं ओ पूरा कीता ही? नाम जपिया ना तेरा, मैं तेरा नाम नहीं जपिया, मैं सिमरन नहीं कीता, जेड़ा वादा कीता सी मैं पूरा नहीं कर सकिया। साहब कहिंदे

मना मैं रूप, मेरा सेवा रूपी रूप चंगा नहीं, ना बंके नैना मेरे नैन भी सोने नहीं हन, ना कुल टंग ना कुल चंगी है, ना परमात्मा मेरे कुल कोई टंग है, ना मीठे बैण ना ही मेरे बोल मिठे ने, जेड़े मैं बोल बोल के तेनू अपने बस कर ला, मेरे कुल चंगा गुण कोई भी नहीं।

मेनू ए दस ए जिहड़ा नगर है एदे विच रहण वाले लोग किहो जाए ने, किहो जाए ने लोग। कहिंदा एदे विच रहण वाले लोग किहो जाए ने, मैं तेनू ए दसा पहले तू दस जिथो तू आए ओथों दे लोग किहो जाए सन, ओथों दे लोग किहो जाए ने। कह लगा जिथो मैं आया ओथे बड़े माड़े लोग रहिंदे, बहुत माड़े, इसलिए मैं ओ नगर छड़ के इस नगर विच आया, हुण दसो इथों दे लोग किहो जाए ने। बाबे ने जवाब दिता, भाई वापस चला जा, इथों दे लोग ओदू भी माड़े, ओदू भी माड़े, वापस चला जा। साध संगत इसे तरह एक होर प्राणी आया, एक होर प्राणी ने आके आवाज मारी। हुण आवाज दे विच वेखो अंतर किन्ना है। आवाज मारदे आखिया, बाबा जी मेरी गल सुन जा। जिस वेले ऐसी मिठी मधुर आवाज बाबे ने सुनी, बाबा रुक गया। हां पुरशा दस किवें आया ते किवें बुलाया ही। कह लगा, बाबा जी मैं एक गल तुहाडे कोल पुछना चाहना, मैनू तुसी दसोगे? कह लगे हां जरूर दसांगा। पुछ की पुछना? कह लगा, बाबा जी मैं ए पुछना चाहना इस नगर दे लोग कैसे ने, इस नगर दे लोग किहो जाए ने। हुण बाबा जी ने जवाब दिता, कहन लगे पुरखा पहले तू दस जिथो तू आए ओथों दे लोग किहो जाए सन, जिहड़ा नगर तू छड्डे है ओथों दे लोग किहो जाए सन। ए कहन लगा, बाबा जी पुछो कुछ ना, जिथो मैं आया ओथों दे लोग इन्ने भले सन, इन्ने चंगे सन, मन नहीं सी करदा मैं ओथो आवां, पर बदकिस्मती जे मैं आ गया, पर मेरा मन एही करदा है जे फिर किते समा मिलिया रवांगा मैं उसे नगर विच, होर नहीं किते रहना उथे ही रवांगा। पर तुसी मैनू दसो इथों दे लोग किहो जाए ने। हुण बाबा जी ने जवाब दिता, भले पुरखा जिथे तू आया इथों दे लोग बड़े ही चंगे, बड़े भले पुरश ने, तेनू बड़ा प्यार देनगे। कहन लगा, मेरा जीवन सफल हो गया। हुण तुसी हैरान होवोगे कि ओही बाबा इस नगर नू माड़ा आख रहा है, ओही बाबा इस नगर नू चंगा आख रहा है, इहदे विच राज की है? क्योंकि बुरियाई चंगियाई साडे अंदर है, वो साडे अंदर दी बात है। उस बाबे ने उस नौजवान दी आवाज तो पहचान लिया सी, क्योंकि जिसकी आवाज इहो जी खरवी है, ये साडे नगर विच आएगा ते साडे नगर विच भी सारिया ने इहो जिहा बनाएगा। तुहानूं गुरु नानक दा वचन याद है, गुरु नानक पातशाह सियालकोट अंदर जो गए ते गुरु नानक पातशाह दी बड़ी सेवा हुई, बड़ी सेवा हुई, ते साध संगत जिस वेले सेवा तो खुश होके गुरु नानक पातशाह जी ने आज ओना नु की आखिया, कहन लगे उजड़ जा, उजड़ जा। ते साध संगत जदों बाबा जी अगे गए ते कई ऐसे लोग सन जिन्हां पत्थर भी मारे, पत्थर भी मारे, बुरा भला भी आखिया। सतगुरु गुरु नानक पातशाह कहन लगे, भाई तुसी वस दे रहो, तुसी बस दे रहो। भाई साहब भाई मरदाना जी कह लगे, बाबा जी मैनू एक गल तां दसो, जिन्ना तुहाडी सेवा कीती, तुहानू इतना मान सत्कार नाल पूजिया, उन्हां नू कहिंदे हो उजड़ जाओ, ते जिहड़े पत्थर मारदे ने उन्हां नू कहिंदे हो बस दे रहो, यह रमज की होई? कह लगे, भाई मरदाने तू ते कीर्तनी है, तेनू ते चंगी तरह पता है, फिर क्यों सवाल कीता ही? कहन लगे, नहीं बाबा जी मैं तुहाडे मुंह सुनना चाहना, तुसी मैनू दसो कि इहदे विच राज की है। कहन लगे, भलिया पुरशा जिन्ना सेवा कीती उन्हां नू आखिया उजड़ जाओ, इसलिए आखिया ओ जिथे जाणगे उथे सेवा पंथी पैदा करनगे, उथे सेवा करन वाले अपने नाल लाणगे, ते जिथे जाणगे उथे सेवा दी आदत पाणगे, ते जिन्ना मारे ने पत्थर उन्हां नू आखिया बस दे रहो, इसलिए आखिया ए जिथे जाणगे उथे अपने वर्गे बुरे पैदा करनगे, ए इत्थे ही वसदे चंगे।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਬੁਰਿਆਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਟੱਕੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਬੁਰਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪ ਖੁਦ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗਿਆਈ ਭਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਿਆਈ ਭਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੁਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੁਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਸ ਇਸੇ ਭਰਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਟਾਇਆ।

हे माधव माया दे मालिक, माया दे साई, माया दे पति, हम ऐसे तू ऐसे, साध संगत हूं ध्यान देना। हुण इत्थे परमात्मा किहो जे है ते असी किहो जे हां, सतगुरु कह रहे ने हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन।

करेंगे। हम पापी तुम पाप खंड। हे परमात्मा असी चंगे क्यों नहीं? क्योंकि असी पाप करने वाले हैं, तुसी पापां दा खंडन नाश करने वाले। किवें चंगे हो गए? हे परमात्मा चंगा ते फिर तू ही होया ना। निको ठाकर देसा सामने वालों चंगा तू, जेड़ा साडे अवगणा का भी नाश करी जाना। हम ऐसे तू ऐसा। आओ अगे ख्याल करिए, क्योंकि बाणी बड़ी अथाह है, बाणी बड़ी अथाह है। कोशिश करिए इस मान सरोवर ते आइए ते गुरु ग्रंथ दे अखर एक एक चुगन दी कोशिश करिया करिए। इस एक एक शब्द दी विचार इतनी कीमती है, गुरु बख्शिश करे रहमत करे जे कते मन च वस जाए जीवन बदल जाता है, जीवन पलट जाता है। हुण सतगुरु ख्याल देंदे हुए कह रहे ने।

तुम समसर नहीं दयाल मोह समसर पापी। भगत कबीर जी कहते हैं हे मेरे माधो असी के हो जाए ते आप के हो जाए। कहो कबीर मेरे माधवा तू सर्व व्यापी तुम समसर नहीं दयाल। समसर कहते ने तेरे वर्गा, तेरे वर्गा कोई दयालु नहीं है कृपालु नहीं है। मोहे समसर पापी ते मेरे वर्गा कोई पापी नहीं है। तेरे वर्गा दयालु कोई नहीं मेरे वर्गा पापी कोई नहीं ते मेरे वर्गे अवगुण हारे दे ते अवगुण आप ही बख्श सकते हो।

अवगुणहारा ते आप उपकारी हो। मैं अवगुण करी जाना, आप मेरे अवगुणा दा नाश करी जांदे। ख्याल करना, परमात्मा अवगुण बख्शदे हन। एक जगह भगत कबीर जी ने बड़े फखर नाल गल आखी, कहिंदे ने हे परमात्मा तो किन्ना दयालु है,

हे रमैया मैं तेरा बालक हां काहे ना खंडस, तू मेरे अवगुण किवें नहीं नाश करेगा। किन्ना मान है, किन्ना फखर है। ते ऐसा फखर भगत ही कर सकदा है, भगत ही कह सकदा है जिदे हिरदे अंदर परमात्मा दी याद वसी हो, जिहड़ा दावे नाल इह कह सके कि मैं तेरा बालक हां, ते अपने बालक दे तू अवगुण किवें नहीं नाश करेगा, तू अपने बालक दे अवगुण किवें नहीं बख्शेगा, मैं तेरे कोल अवगुण बख्शा लैणे ने। इसलिए भाई आओ आपां उस मालक अगे इस तरह बेनती करिए

गोविंद हम ऐसे अपराधी, ऐसे अपराधी। भाई साहब भाई गुरदास जी कहंदे ने कि हे मेरे मालिक असी किहो जिहे अपराधी आ, साडे अंदर किन्ने कु औगण ने। भाई साहब जी ने इस पौड़ी अंदर 22 औगणा का जिक्र किया है। कहंदे 22 औगण सब तो वड्डे मेरे विच ने। सत संगत ध्यान करना,

नाम तो बिना भाई तेरा किवें छुटकारा हो सकदा, ते नाम मिलदा कित्थों है अख्या जपन वालियां दी संगत विच तैनू नाम मिठा लगन लग जाएगा। जपन वालियां दी संगत विच नाम तेरा आधार हो जाएगा, साच नाम आधार। जिन्हां नू नाम दा आधार हो गया फिर उदियां सारियां ही भुखां दूर हो जांदियां हन। उचारण करो श्री इस लई हजूर बख्शिश करदे हन कि ए गुरु दी शरण विचों मिल सकदा। जैसे मंदिर में बल हरना ठहरे, नाम बिना कैसे पार उतरे, कुंभ बिना जल नाहे टिकावे। कुंभ कहिंदियां ने घड़े नू, आख्या जिस तरह जल कुंभ तो बिना टिक नहीं सकदा, आ बर्तन तो बिना जल किवें टिकाओगे भाई। ओ जल बर्तन तो बिना बिखर जांदा है, जाया हो जांदा है। ते जे तैनू ही सतसंग नहीं प्राप्त होया, गुरु की शरण नहीं प्राप्त हुई, तो तेरा मनुष्या जन्म भी इसे तरह रुड़ जाएगा। कि कुंभे बद्धा जल रहे, जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बद्धा मन रहे, गुर बिन ज्ञान ना होए। गुरु की शरण विचों तैनू लोक परलोक दे सुख मिलनगे।

नादेड़ दी धरती हजूर गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का दरबार। क्यों बई आज इस दरबार विच सोग क्यों छाया है? संगतां नीवी पा के बैठिया ने, अखां विचों हंजू केरी जांदियां ने, की गल? गुरु गोविंद सिंह महाराज की आख रहे ने? अज सानू शरीर करके सदा वास्ते बछोड़ा दे रहे ना महाराज, इंज ना करना। असी तुहाडे दर्शन कर करके जिउंदे हां, तको संगतां वल किवें हंझुआं दा मीह वरसा रहीआं ना महाराज, असीं इह विछोड़ा सहार नहीं सकांगे। संगतां दा वैराग देख के गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी दा प्रकाश करवाया, पंजा सिंघां नूं तैयार करके गुरु ग्रंथ साहिब जी दी हजूरी विच खलारिया। आप गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी दियां परिक्रमा कीतियां, पांच पैसे ते नारियल लेके गुरु ग्रंथ साहिब जी अगे नमस्कार कीती। सिंह अज मैं तुहानू गुरु ग्रंथ साहिब जी दे लड़ ला के चलिया। अज तो बाद देहधारी गुरु नहीं होएगा, बाणी गुरु गुरु है बाणी। आत्मा ग्रंथ विच शरीर पंथ विच जिन्हें मेरे शरीर करके दर्शन करने होण, मेरे खालसे का दर्शन करे, जिन्हें मेरे नाल वचन करने होण, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी प्यार नाल पढ़े, मेरा खालसा हमेशा गरीबां ते मजलूमां दी खातर जूझदा रहेगा। ये अपना धर्म भी बचाएगा, दूजिया का धर्म भी रखेगा। हमेशा ही गरीबां ते मजलूमां दी खातर जूझेगा, सर्वत दा भला करेगा। अज ए वचन आख के गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने हुक्म कर दिता, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। आज्ञा पई अकाल की, तबे चलायो पंथ। अब्दाली ने वार वार हिंदुस्तान ते हमला किया, हमला करता है, लुट मचा के चला जाता है, तबाही कर जाता है। तैनू कोई रोकने वाला नहीं? हां भाई, हुण तू हिंदुस्तान विच तबाही नहीं मचा सकता, क्योंकि सानू गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने जदों गुरु दे लड़ लाया, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दा लड़ पकड़ाया ते समझाया सी, सर्वत दा भला करना है, दूजियां दा धर्म बचाना है। आ एक दिन फिर चौथी वार अब्दाली ने हिंदुस्तान ते हमला कीता है। आगरा ते मथुरा शहरां दे विच इहदे सिपाहियां ने लुट मचा दित्ती, मंदरां विचों कीमती जेवर चुरा लए। किड्डा पापी है, भगवान दियां मूर्तियां तो भी मुक्त लाई जांदा, होर भी घोर पाप करदा है। घरां विचों कीमती समान भी लुट लिया ते नौजवान बहु बीबियां नूं भी बेटियां नूं भी पकड़ के गड्डियां विच बिठा के इहदे सिपाही लै चले। सतसंगियो, बीबियां ने हाल दुआई मचाई है,
ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਵੀਰਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਕੜੇ ਵਧੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਬਾਵਲਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ। ਪਰ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਲੱਦਿਆ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਜਾ ਮਾਰ ਕੰਡਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਇੱਥੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਦੋ ਸਿੰਘ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੀ ਤੱਕਿਆ, ਬਈ ਆਹ ਗੱਡੇ ਤੇ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਗੱਡੇ ਧੂੜ ਉੱਡਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸਿਰ ਤਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹਾਲ ਦੁਆਈ ਮਚਾਈ, ਓਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲਟੇਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾ ਲਓ, ਬਚਾ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲਟੇਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੀਬੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਸਮਝ ਗਏ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਲਾਜ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਲੱਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਕੜੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਤੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਫੌਜ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

0: देह दस मन चाओ न जाए विसूरिय,
1: देह दस मन चाओ
0: न जाए विसूरिय,
2: होए पवित्र
0: सही चरना धूरिय।

ये जो शब्द आप श्रवण कर रहे हो गुरु अर्जन देव पातशाह जी दा शुकराने दा शब्द है सुलही ते नारायण राख। समय दा बादशाह जहांगीर जिसनु ए गल चंगी नहीं सी लगदी के गुरु नानक दे दर दी दिनों दिन वड्याई वधदी जावे। गुरु नानक दे दर ते जिथे गुरु के सिख आके जुड़दे सन हिंदू भी और मुसलमान भी रूहानियत प्राप्त करन लई हजूर दे चरणा विच आ जुड़दे सन। इस दे मन विच बड़ा दुख सी के गुरु नानक दे दर दी दिनों दिन वड्याई वधदी जा रही है। अपने सीपा सलार नूं हुकम दिता भई तू कश्मीर नूं जा रहे हैं जंग करन लई ते रस्ते विच गोंदवाल नाम करके पिंड है जिथे गुरु अर्जन देव रहिंदा है उस नूं भी शोधदा जाई उचारण करो श्री वाहिगुरु। ते जदों ए पता गुरु अर्जन देव पातशाह जी नूं लग्या ता सिखा ने बेनती कीती जो इस शब्द विच अंकत है प्रथमे मता जे पत्री चलावो द्वितीये मता दोए मानक पहुंचावो तृतीये मता किश करो उपाया मैं सब किश छोड़ प्रभ तू ही ध्याया। हजूर अगे बेनती कीती गई के महाराज जे हुक्म करो ता बादशाह जहांगीर नूं पत्रका लिख दईए जां दो सियाने बंदे भेज दियो कुछ उपा जरूर करो। ता धन गुरु अर्जन देव पातशाह ने आख्या मैं सब किश छोड़ प्रभ तू ही ध्याया। नेत नाल जदों बड़े हंकार दे नाल सुली खां चढ़ाई करके आ रहा सी ता इस दा घोड़ा ऐसा पागल होया बलदे पठे विच जा वड़िया ते सुनी समेत स्वाह हो गया। इस शुकराने वजो हजूर ने शब्द उचारण कीता सुलही ते नारायण राख सुलही का हाथ।

ऐसा हर सेविए नित ध्याइए। साहिब गुरु रामदास साहिब जी फरमान कर दे, ऐसा हर सेविए नित ध्याइए,

0: सिकंदर
1: को हर समान नहीं राजा ए तू पद सब दिवस चार के झूठे करत दिवाजा तेरो जन होए सो एकत डोले तीन भवन पर छा जा हाथ

सबो कुछ अर्पण कर। पर मेरे पातशाह कहंदे ने उना दे तन मन अर्पण करी जिना ने अपना तन मन वाहिगुरु दे अर्पण कीते। फिर उना ओ परचून दे मालक नहीं हुंदे, ओ ता थोक दे वपारी हुंदे। थोक विच पदार्थ देंदे ने, लोकां नूं वंडदे हन, पर अपना सब कुछ वारिया हुंदा वाहिगुरु तों।

ऐसे महापुरखां दे सिर्फ दर्शन ही कीतियां ओ पाप मुक जांदे हन, खत्म हो जांदे नी।

जन्म मनुख भक्ति करे जन्म मरण तो छुटकारा नहीं मिलता। पर पातशाह कहने ने बड़ा सुखैन तरीका है महापुरुषां दे चरणां दी पूजा कर।

एतन वस्ती खात में मारी गोर करे एतन वस्ती खात निमाणी गौर करे अज मिला शेख फरीदा तक मुकुंजड़िया अज मिला शेख फरीदा तक मुकुंजड़िया मनो मचंदड़िया जे जाना मर जाइए कुम ना आइए झूठी दुनिया।

चले चल हार बिचारा ले मनो, चले चल हार बिचारा ले मनो। गंढे दिया छे मार तोड़े दिया सिखनो, जिमें पुछे आसमान फरीदा केवट किन गए

तेरे जैसे रंग तुरंग करीब मस्त रंग तुरंग करीब मस्त सब लोग सिदासी कवि से मुसाई खां सबे उठ जासी।

मुकाम ता पर जानिए जा रहे ने चलो दुनिया कैसे मुकामे दुनिया कैसे मुकामे।

सेवक बन गए, पर पहाड़ी राजे इतने गुलाम हो चुके सन, इन्ने नितानी हो चुके सन, इन्ने मन कमजोर हो गए सन के मुगल बादशाह दे अगे सिर नहीं सन चुक सकते। सगा औरंगजेब दे नाल मिल के गुरु गोबिंद सिंह जी दे नाल लड़ाई शुरू कर दिती। उन्हां मूर्खां ने यह ना सोचिया कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साडे भले वास्ते लड़दे ने, सगा ये लोग गुरु साहिबां दे नाल लड़ाई छेड़ बैठे। लड़ाइयां ते पहला भी हुईयां,

अपने घरां नूं पहुंचे। घरवालियां ने पुछिया, सुनाओ की हाल है गुरु साहब दा, आनंदपुर साहब दे किले दा की हाल है, की हाल है साहबजादियां दा, गुरु के परिवार दा, सिखां दा। तां भाई मान सिंह अपने परिवार नूं कहण लगे, असी ते गुरु नूं किले विच छड के आ गए, किले नूं घेरा पिया, लखां दी तादाद विच फौज है, असी गुरु नूं छड के

सिख ने। ए गल करां वालियां ने सुनी, उन्हां दियां अखां गुस्से नाल लाल हो गईयां। उन्होंने कहा ठीक है, अज गुरु नूं छड आए, अपनी जान नूं प्यारी समझ के एक दिन ते मरना है, कदू तक जीवो? पतित होके जीवना, दुनिया दे डर तो सिख गवा के जीवना, को जीवना है एक दिन ते मरना है, जे लड़दे मर जांदे गुरु दे सामने शहीद हो जांदे, गुरु तू अपनियां जाना वार देंदे, ता असी शुकर करना सी साडे पति धन ने जेड़े सेवा करदे मरे। अज तुसी सिखी गवा के आए हो, गुरु नू छड़ के आए हो, मौत तू बहुत डर लगदा, दुनिया दे सुख प्यारे लगदे, इस तरह करो इस साड़ियां चुनियां ले लो, पग्गां ला दियो, अपनियां चूड़ियां ला के अगे रख दितियां, ए चूड़ियां पा लो, तुसी घरां विच बैठो, ए कमर कसे खोल के सानू दियो, कमर कसे करके असी जावांगियां।

खून ने फिर उबाला खादा कि मना बड़ी भुल की थी। दुनिया दे सुख बदले गुरु नु छड़ दिता, सिखी छड़ दिती, पर जिदी कोई इज्जत नहीं ओदा भी को जीवना है, सिर झुका के जीवना को जीवना है। धर्म वास्ते मरना, धर्म दे राह ते चल के मरना, देश कौम दी सेवा।

आनंदपुर साहब का किला गुरु साहबां ने छड़ दिता क्योंकि सिखा ने बड़ा जोर पाया किला छड़न वास्ते। किला छड़िया जिन्ना कुरान शरीफ की कसम खाधी उन्ना कसमां तोड़ दितियां, जिन्ना आटे की गऊ बना के कसम खाधी उन्ना भी कसमां तोड़ दितियां। गुरु साहबां दे काफले ते हमला कर दिता। इस हमले दे विच गुरु साहबां दा बड़ा कीमती समान, कीमती पुस्तकां लिखियां हुईयां सरसा नदी विच रुड़ गईयां।

जिथे वड़े साहबजादे शहीद हुए उथों तुरे माछीवाड़े आए माछीवाड़े तो चले कई जगह हुंदे साहब जी जगह जगह ठहर दे लखी जंगल पहुंचे संगता गुरु का जस गुरु के दर्शन करन वास्ते फिर आन लग पईया ओही रौनका फिर लग गईया पुत्रां दे शहीद होण दा कोई गम नहीं जदों गुरु साहिबां दे धर्म सपत्नी माता सुंदरी जी ने पुछिया गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं महाराज मेरे चारों साहिबजादे किथे ने ता गुरु साहिबां ने कहा सी तुहाडे चार पुत्र उन्हां सारिआं तों वार दित्ते ने जेड़े जिउंदे ने जिन्हां हाली जिउणा है तुहाडे साहिबजादियां ने सिखी दा महल होर पक्का कर दिता है अपना खून दे के समा बीतिया गुरु साहिब जी हुण कोट कपूरे पहुंचे साहिबां नूं पता लगा सरहिंद दा नवाब वजीर खान 5000 फौज लै के पिछा करदा आ रहा है तां गुरु साहिबां ने कपूरे नूं कहा कपूरिया साढ़े पिछे वजीर खान 5000 दे करीब फौज लैके आ रहा है तू अपना किला दे तां कि इत्थे असी उहदे नाल दो हथ कर लईए कपूरा अखवांदा गुरु दा सिख है पर औखा समा देखिया तां इह वी मुंह फेर गया कहन लगा महाराज मुगलां दा राज है मैनूं मुगलां कोलों डर लगदा है जे तुहानूं किला दिता ते मुगल मैनूं खत्म कर देणगे वजीर मैनूं खत्म कर देवेगा बादशाह मैनूं सजा देवेगा तां गुरु साहिबां ने कहा जिन्हां दे मन विच डर है उन्हां दी सानूं लोड़ नहीं अज वी इहो जिहे लोक आए ने जिहड़े दुनिया दे सुख बदले पतत हुंदे ने सिखी छड्डदे ने अमृत तों दूर ने पर जिहड़े इंसान अपने धर्म च पक्के नहीं अपने गुरु

पतला हड्डियां दा मजबूत कमर कस्सा कीता ए है भाई मान सिंह म्यान विचू कृपान खिची जकारा छड़िया लकीर मारी लकीर टप्पी ते वंगार के किया भाई मैनू अज गुरु दे हुकम दा पता लग गया मैं अज ये फैसला कर लिया है।

सेवा के जीवे ता क्या जीवे, सेवा करदे आ सिखी निभांदे आ मौत होवे ता जीवन सफल हो। ए गल

ऐसे तीर छड़दे ने जेड़े तीर वजीर खान दे जरनैला सरदारा नू लगदे ने ते उन्नू बड़ा भारी नुकसान हो रहा। आखिर लड़दियां लड़दियां 13 सिंह बाकी रह गए। इन्हां 13 सिंघां ने हुण बंदूकां छड़ दित्तियां, किरपानां कढ़ियां, हत्थां विच ढालां फड़ियां, जकारे छड़ दे बेरियां दे उल्लों निकले ते दुश्मन दे उत्ते बिजली दी तरह टुट के पै गए। उन्हां सिंघां दा किरपाना सूत के दुश्मन ते टुट के पैना गुरु साहिबां ने जदू देखिया महसूस कीता ते गुरु साहिबां नूं खुद ए गल लिखनी पई। उछले छलंगी गुरु के पुचंगी, दियो ओज ऐसो हजारन जैसो, महा को पठाने गज कीट माने, बड़े उत्साहे रणन शत्र गाहे। उछले छलंगी गुरु के पुचंगी, के मेरे पुचंगी मेरे पुत्र छाला मार मार के बड़े उत्साह दे नाल लड़ाई दे मैदान विच नितरे। कल्ला कल्ला हजारां ते भारू पिया, महा को पठाने गज कीट माने, बड़े क्रोध दे विच दुश्मन ते टुट के पए। हाथियां नूं वी कीड़ियां दे समान समझदे ने, बड़े उत्साहे बड़े उत्साह विच लड़दे ने। रणन छत्र गाहे, रणन कहिंदे ने लड़ाई दा मैदान, लड़ाई दे मैदान विच शत्रुआं नूं अपने पैरां थले लताड़िया। चले वीर सोउ बड़े उत्साहे, परे शस्त्र मारे महा जंग माहे, कड़े म्यान तेग गहे अथ ढाले, चलाकी करन ते सो छाले उछाले। म्यान विच तेग कटी हथा विच ढाल फड़ी, बड़ी चलाकी दे नाल छाला मार दे, वार बचांदे वार कर दे, ए सिंह दुश्मन दे नाल लड़दे पए। साहब जी ने बड़ी सूर वीरता दा नजारा अपनी कलम नाल आप लिखिया। कड़े म्यान तेग गहे अथ ढाले, चलाकी करन ते सुछाले उछाले, आखिर चटापट जुटे लटा लट होए, सटापट सुटे कटा कट जोए, कटा कुट कटे चटापट मारे, खटा खट खोटे हटा हट हारे। आखिर लड़दे मरदे ए सिंह भी शहीद हो गए। वजीर खान जद देखिया उसने कि ना कोई तीर चल रहे है, ना कोई गोली चल रही है, इसने फतेह का डंका बजाया, वापस मुड़ गया। हुण भाई मान सिंह मुदड़े मुंह पे है, सेंट दा पे है, सह टुटदे ने। हुण भाई मान सिंह अरदास

पूरा हो गया। आपां कई बार कह देने कोई मरे कि फलाना पूरा हो गया, नहीं, जिन्हें अमृत नहीं छकिया, गुरसिख परिवार विच जन्म लिया, सिखी विच पूरा नहीं, ना बाणी नाल जुड़िया, ना गुरु नाल जुड़िया, ना अमृत नाल जुड़िया, वो किवें पूरा हो सकता है। पूरा तो होया है भाई मास जिदा कोई जीवन नहीं चंगा, जिन्हें दुनिया का भला नहीं किया, जिन्हें ठगियां कीतियां, दुनिया नू धोखे दिते, अपने भले वास्ते लोकां नू दुख दिंदा है, वो जदू मरदा है वो कदी पूरा नहीं हुंदा। पूरा वो है जिहड़ा सच्चा जीवन जीउंदा है, जिन्हू रब मिले वो पूरा है, परमेश्वर पूरा है, ते उहदे प्यारे पूरे ने। वो पूरा कदी नहीं होया जिहदा जीवन उच्चा नहीं। किन्नी कृपा होई भाई मां सिंह, एक ओदा मरना जिहड़ा गुरु तू बेमुख होके मरदा है, इत्थे भी फिटकारा, दरगाह विच भी फिटकारा, एक मरना

दुनिया दे भले वास्ते जीविए जो तेरा मिशन है। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला अमृत छकिए बाणी नाल जुड़िए तेरे नाल जुड़िए धर्म वास्ते लड़िए।

तो तुम ते लेना तू मेरा गहना जो तू दे सोई सुख सेना तू मेरा पिता तू है मेरा माता।

जन को तब अपने का तान जो तू करे करावे स्वामी सा मसलत परवान चरण चरण हम अनाथ ना थकन अपनी कृपा करे चरण कमल नानक आला दे किस दिन आम के पर परमेश्वर गत नारायण तन गोपाल साखी।

आई शोभ नहीं बिन परतारे बिनो सुनियो जब ठाकर मेरे बेग आयो कृपा धारे कहो नानक मेरो बनियो सुहागो पत शोभा।